आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026। सुबह के 5:53 और 40 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आइए अब आज सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। प्रातः 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। लेकर आपके साथ होंगे आशुतोष भारद्वाज। समाचार का 7:05 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगे सत्य श्रवण शर्मा। और 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ रहेंगे आशुतोष भारद्वाज। सुबह 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने सत्य श्रवण शर्मा के साथ।

समाचार प्रसारित होंगे सुबह 10 बजे 10:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का, आपके साथ रहेंगी गीतिका। 11 बजे समय रहेगा प्रोग्राम पोस्ट ऑफ बॉक्स नंबर 111, विषय रहेगा चौल साम्राज्य। प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे राजेश कुमार। और दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 12:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का, आपके साथ रहेंगी गीतिका। दिन में 1 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 1:05

0: Well, listeners, with those devotional numbers, it's time to wrap up this session of our Father's Day special program with Sunday Reflections from Akashvani Kohima. Thank you for joining us, and once again, a very happy Father's Day to
1: Namaskar.
0: All of those.
1: Namaskar. Akashvani se Samachar Prabhat ke saath, main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार. दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे. चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज. कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया. पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से. अब समाचार विस्तार से. देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग. मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है. पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा

0: हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
0: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है।

0: इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रोग्राम के दूसरा गेट आशा भोसले लगा वास्ते ये रात फिर ना आएगी फिल्म ऑटोनिले टू गेट करने म्यूजिक डिजे ओपी नायर और लिरिक एस एच बिहारी उन्हें ठगा सब बिल्ला गेटे कुनुबा मैसेज आहिगिना से सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप खनप्र एफ एम ट्रैक बिल्ला फैमिली के गुड मॉर्निंग विश लिखीगिना पठाया से वेरी गुड मॉर्निंग टू सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप और यदि दुर्गेश नागनपुरी राधेश्याम नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमभाई बाबू दिव्यांश सूरज कुमार डक्षे सूरज वर्मा ऋषभ कनक भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेन्द्र और ममता भाई वर्मा प्रवि गुड मॉर्निंग विश लिखीगिना पठाया से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू दुर्गेश जी एंड फैमिली और चंद्र टिमुंग प्रवि सारी हजन कार्बी आंगलोंग प्र ट्यून इन कुरीगिना गुड मॉर्निंग विश लिखीगिना पठाया से और अपना लगा पुरानी प्लेलिस्ट ला गाना हुनीगिना एन्जॉय कुरा से कोई गिना लिखीगिना पठाइसे चंद्र टिमुंग अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू बेसी खुशी आसे कि आज भी अपना आहिगिना प्रोग्राम ते साथ दिया से पुरानी गीत आसे होले भी अपना हुनीगिना एन्जॉय कुरा से तो हुनीगिना एन्जॉय कुरी थाकि भी कोई गिना अपना के जनाय दिया से उन्हीं ढंग सब बिल्ला प्रोग्राम आगे लो जाए से और प्रोग्राम एक बार दूसरा गीत दिया से वो कौन थी फिल्म की गीत गए से लता मंगेशकर म्यूजिक दिसे मदन मोहन और लिरिक राजा मेहंदी अली खान

लता मंगेशकर लगावास दे सोटन की बेटी फ्लेम आउट होने ले टू गीत कारण म्यूजिक दिस वेटपाल और लिरिक्स सावंत कुमार उन्हें रगा सब लाग दूसरा गीत आको न बजा गोटे याते आको एक टा मैसेज आई गिना से लिखी गिना पठाई से बोका जान प्रा अभिजीत और तार प्रा भी गुड मॉर्निंग विश लिखी गिना पठाई से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिजीत प्रोग्राम दे आई गिना शामिल हुई गिना আপনার লাগা গুড মর্নিং উইশ লিখি কিনা পাঠাই দিয়া নিমিতে খুশি জানাই দিয়েছে তো শুনিব ওয়াক ফিল্ম কি গেট গাইছে আশা ভোসলে মিউজিক দিছে রাভি আর লিরিক সাহির লুধিয়ানভী

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment FM 103 MHz

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Tracoban
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment
2: FM Tracoban
1: FM 103 MHz
3: स्वागत करे आकाशवाणी एफ एम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर रानी डी एस ए आरजेस चॉइस हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम।

प्रोग्राम सबसे पहिला थियो उदित नारायण र अलका याज्ञिक लगा वास्ते अंगारे फ्लेम आउट हुनेले हुने ढाका सब बेलाक आपनार खान सब जुन जुन जगाते थाके आसे आहिबी प्रोग्राम टि सामिल होबी आरो गीत खान तो लइकिन एन्जॉय करा होबी आमी गाला प्रोग्राम आगे लइ जाय आसे र ए बार दुसरा गीत हुनिबो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म की गीत

अभिजीत और अलका याग्निक लगा वास्ते फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म उठने शुनी थका सब बिल्क शुनब गुलाम फिल्म की गीत गाय से कुमार सानू और अलका याग्निक।

दिल क्या करे फ्लेमट अपनालोके उदित नारायण और अलका याग्निक लगा वास्तु शुनिले उन्नी ढगा सब बिल शुनब हम दिल दे चुके सनम फिल्म के गीत और गीत गाय से कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद सलामत और डोमिनिक सेरिजो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गीत लगत आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर इटा करने हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिए याद प्रोसेस करी दिया से होने थका सब बिला इटा प्राला पसते एफएम रेनबो रिले प्रोग्राम दिया होने बार रो आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज़ अपना खनलोटे आको वापस आए बो साम तीन बजे

नंबर पर आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा सकते हैं, उन गीतों के साथ जुड़ी कोई आपकी बात हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। साथ ही हमने आपसे ये भी पूछा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या खास करते हैं, तो आप उसके बारे में भी अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल हम पहुंचते हैं आपके मैसेज की तरफ एक बार फिर से, और जहां पर पिछला मैसेज छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैसेज अगला है गुड्डू धाकड़ का, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से इन्होंने लिखा है, एक गाने की फरमाइश की है और लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए मैं तो सुबह 5:30 बजे रोज उठता हूं। क्या बात है, सुबह उठने की आदत बहुत ही कमाल की आदत है। आप सुबह उठकर बहुत सारे काम समय पर समेट देते हैं और फिर दिन भर आपके लिए बहुत सुकून भरा सब कुछ हो जाता है। अगला जो मैसेज है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, और इसमें जो है इन्होंने अपनी फरमाइश तो साथ ही साथ लिखी भी है और एक गाने की फरमाइश अपनी पत्नी के लिए लिखी है इन्होंने, जिनका नाम है नंदिनी जी, और ये बात हम तक पहुंचाई है तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त इतने प्यारे मैसेज के लिए आपका। जर्मनी से इला और सौरभ का भी मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और मैसेज भेजा है हमें कासगंज से मास्टर राधेश्याम ने, मास्टर राधेश्याम शाक्य, इन्होंने लिखा है कि करो योग रहो निरोग, अपने पिता का रिस्पेक्ट करें, और एक गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है। अगला जो मैसेज है आपका नाम ढूंढ रहा हूं दोस्त, जगदीश कुमार राहुल रितिका नांगलोई से, देख रहा हूं कोई और नाम तो छूटा नहीं है। नहीं नहीं नहीं छूटा नहीं है, आपने भी गाने की फरमाइश की है, और हमारे जो पुराने दोस्त हैं इनका नाम है सौरभ अनेजा जी, इन्होंने भी मैसेज किया है और हमेशा की तरह अपना एक वन लाइनर मैसेज भेजा है कि मेरी सॉन्ग चॉइस नहीं होती, मैं तो बस शो को एंजॉय करता हूं। बहुत अच्छा करते हैं आप, और आप मैसेज भेजते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। अनीता वर्मा का दिल्ली से मैसेज आया है और एक गाने की इन्होंने भी फरमाइश की, और आज फादर्स डे पर बहुत सारे जो गीत आप सुनने की फरमाइशें कर रहे हैं लगातार हमें मिल रही हैं आपकी फरमाइशें, और हम भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फरमाइशों को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अगला जो मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का मैसेज आया है, और मैसेज करने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, उनका नाम है वरुण वार्ष ने अलीगढ़ से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। गाने की फरमाइश एक और आई है और वो है आफशा खानम से धामपुर जिला बिजनौर से, और इन्होंने आज के इस खास दिन पर हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स लिखकर भेजा है। और अगला जो मैसेज है ये है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और कुशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और मैसेज भेजा है हमें आकांक्षा ने मुंबई से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और लगभग उसी तरह की फरमाइश एक और आई है, इनका नाम है श्याम सुंदर, गोवा से इन्होंने लिखा है, और इन्होंने आज के दिन से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प जानकारियां भी साझा की कि फादर्स डे की आधिकारिक शुरुआत सन 1910 में अमेरिका में सोनोरा स्मार्ट डोड ने की थी, जिन्होंने अपने एकल पिता द्वारा दिए गए पालन पोषण का सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया, और 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने पहली बार जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की घोषणा की। तो आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। चलिए अब फादर्स डे की बात हुई है तो आप लोगों की पसंद का ये गीत आप सभी तक।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

कुछ ऐसी ही होप, कुछ ऐसी ही पॉजिटिविटी होती है और बिल्कुल इस गाने के साथ हम सभी लोग महसूस करते हैं वो सब कुछ जो हम अपने परिवार में खासकर पापा के साथ जो यादें होती हैं उनको हम जब साझा करते हैं। कांट से मोहम्मद फुरकान ने मैसेज लिखा है कि आज मैं आपका शो सुनने में थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और इन्होंने कहा है कि एक गाना सुनवा दीजिए मेरी पसंद का गाना, तो वही था जो अभी हमने आपको सुनवाया, तो आप ही की नहीं बल्कि कई लोगों की ये पसंद थी जो आप तक पहुंची है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं कि आज विश्व संगीत दिवस भी और सभी को संगीत सुनना अच्छा लगता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा संगीत हमें जीवन में सकारात्मक सोच का निर्माण करता है और संगीत एक मेडिसिन की तरह हमारे जीवन में होता है। बिल्कुल जी, संगीत के बारे में आपने बहुत सही बातें कही हैं। अच्छा, वो लिख रहे थे मैसेज, तो अब उन्होंने पूरा मैसेज लिख दिया है। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से कि सत श्री अकाल राजेश पाजी तुसी केवे हो जी, असी वधिया जी, तुहाडा की हाल है। आगे लिखते हैं कि हैप्पी फादर्स डे, शॉप पर कस्टमर आ गए थे। अच्छा, तभी आप पूरा मैसेज नहीं लिख पाए, तो मैसेज बीच में रह गया, कोई बात नहीं, आप फ्री होकर लिख रहा हूँ तो अच्छी बात है, आपने फ्री होकर मैसेज लिखा और हम तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज भेजने वालों में कुछ मैसेज ऐसे भी है जिनकी फरमाइशें पूरी हुई है और उन्होंने दोबारा से मैसेज करके हमें बताया कि वाह ये तो कमाल हो गया। राहत और गज़ल का मैसेज है, इन्होंने नेहटौर बिजनौर से मैसेज लिखा है, एक गाने की फरमाइश की है। और गांव मलवाला जिला बठिंडा से बिहला सिंह फौजी, गुरनूर मान, निमरत, सतविंदर कौर, बलराज सिंह मान और बलकार सिंह मान का भी मैसेज हम तक पहुंचा है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और कुछ और फरमाइशें हम तक पहुंची हैं देश के अलग अलग हिस्से से। जिला पन्ना मध्य प्रदेश से ए के पांडे हर्ष ने भी मैसेज किया है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। मैसेज जो आगे हम तक पहुंचे हैं वो ये हैं, भगवती नई दिल्ली से लिखती हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वॉक पर जाती हूं, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज भी करती हूं और सुबह सुबह सब मिलकर दिल खोल कर हंस लेते हैं। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा करते हैं आप। और अपनी सेहत के लिए ये सभी चीज़ें हम सभी लोगों को करना ज़रूरी है, खुलकर हंसना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए समय निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं तो फिर हम और लोगों का भी ध्यान रख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर पाएंगे। अगला जो मैसेज है वो है मनमोहन राठौड़ और श्यामू राठौड़ का, साथ में रामू राठौड़ भी। अच्छा, इन्होंने रघुवीर नगर दिल्ली से मैसेज किया है, एक गाने की फरमाइश की है। जोया का मैसेज है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। साथ ही साथ कुछ और दोस्त हैं हमारे जो लिख रहे हैं, अपनी बातें हम तक पहुँचा रहे हैं। और उन दोस्तों के अगर मैं नाम ढूँढूँ तो नाम कई बार ढूँढना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा नाम ना आप कुछ या तो बिल्कुल आगे लिख दीजिए या तो बिल्कुल पीछे लिख दीजिए, तो थोड़ा मुझे ना ढूंढने में आसानी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपका नाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा भी बन जाएगा। लिखा इन्होंने कि एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सोचने की सही दिशा निर्देश अच्छा प्रदान होता है। अच्छा, बिल्कुल हिंदी में लिखा है आपने। हमारे गाने की फरमाइश पूरी हो या ना हो, मैसेज जरूर पढ़ लेना, समझ जाएंगे हमारी फरमाइश पूरी हो गई। धन्यवाद श्याम शंकर मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। और अब जबकि हम फादर्स डे मना रहे हैं तो मदर्स जो है वो अपनी उपस्थिति जो है वो अपने आप को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगी। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से लिखती हैं कि मुझे तो सभी सॉन्ग्स ही अच्छे लगते हैं बट मेरी बिटिया आई हुई है, वो जिसने जैसे वो कह रही है बट वो जाने को कह रही है, अच्छा तो ये मना कर रही है पर वो जा नहीं रही, तो एक गाना है वो आप सुनवा दीजिए तो हो सकता है कि वो रुक जाए। अच्छा, तब देखिए आपने ऐसी बात कर दी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत और इसके बाद वापस आते हैं।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से आप लोगों ने ये उदित नारायण और अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाज में ये गीत सुना, बहुत ही प्यारा सा। और इस गीत की तरह से हम भी आपसे कहेंगे कि जाना नहीं, क्योंकि एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने मैसेजेस जो आपने भेजे हैं उनको हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे वो साथी जो अभी तक अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, हम उनके लिए जरूर कहेंगे कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए और साथ ही कुछ और बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने आपसे ये भी पूछा है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, तो वो भी हमें बता सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Did you know, over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख।

0: चार। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
1: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और आपके अलग अलग सॉन्ग की जो फरमाइशें हैं हम उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो भी आप ही लोगों की फरमाइश का था, और आप तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश रही उसी को हमने आगे बढ़ाया। तो चलिए अपनी कोशिश को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मैसेज किया है हमें सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि FM रेनबो परिवार को पितृ दिवस और योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर एक गीत सुनवाइए, ये इन्होंने कहा है। तो दोस्त मैं कोशिश जरूर करूंगा, और साथ ही साथ अपनी और भी बातें जो प्यारी प्यारी लिखी हैं आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फॉर्मेट आपने बनाया है, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखा, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत लिखा, उसके बाद थोड़ी जगह बताई, और उसके बाद अपना मैसेज लिखा, तो बहुत आसानी से हमें पढ़ने में ये सब कुछ आ गया और हमने पढ़ भी दिया। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इनका भी मैसेज आया है। और गांव शोभापुर से बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने मैसेज लिखकर कहा है कि फिट रहने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, जो आपने शुरू में ही बता दिया था, संतुलित खान पान, पूरी नींद, व्यायाम। हमारा संदेश आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, यदि प्रोग्राम समाप्त होने से पहले आपको हमारा मैसेज मिल जाए तो हमारी पसंद का एक गाना चला दीजिएगा। जी बिल्कुल, हम कोई भी मैसेज ऐसे मिस करने का बिल्कुल हमारा प्रयास नहीं होता है। कई बार हो जाता है, हो सकता है कि आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैसेज भेज दिया हो, ये भी हो जाता है कई बार, या फिर इस तरह की हो, लेकिन अच्छा लगा आपने फिर से मैसेज किया और अपनी बात पूरी हम तक पहुंचाई। मैसेज किया है हमें कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, लिखते हैं कि हम तो सुबह 4:30 बजे उठकर फजर की नमाज अदा करते हैं और अपने मुल्क के लिए और सभी देशवासियों के लिए दुआ करते हैं, फिर वॉक पर निकल जाते हैं, और आज पापा की बहुत याद आ रही है। तो दोस्त बहुत अच्छा करते हैं आप, और ये जो बातें लिखकर पहुंचाई हमने हमें आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय लिखते हैं कि करो योग, रहो निरोग, सबसे बड़ी माया निरोगी काया। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने लिखकर यह हम तक पहुंचाया। अगला मैसेज है, इनका नाम तो मिल गया है मुझे, सतवीर सैनी, गौरव सैनी बिजनौर से। आप ऑडियो मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्त इसको सुनने की हमारे पास अभी तो सुविधा इस समय मतलब कैसे सुन पाएंगे, हम तो बहुत सारे मैसेज पढ़ रहे हैं। किसी भी फिल्म का गाना सुना दीजिए। तो बिल्कुल जी, हम आपको लगातार अलग अलग फिल्मों के गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। जिला मुरादाबाद से, ग्राम दुल्हापुर से कई हमारे साथी हैं जो उन्होंने मैसेज किया है, कहा है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। और नाम है इनके मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। इसके अलावा मैसेज किया है डॉली ने दिल्ली से, लिखा है कि योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, फिट रहने के लिए सोने, उठने और खाने का टाइम फिक्स्ड है मेरा, सदा भोजन लेती हूँ और अच्छा मुझे लगा सदा भोजन लेती हूँ और सादा

भोजन लेती हैं दोनों। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें हो तो अच्छा है। आगे लिखा है इन्होंने कि डफली वाले डफली बजा, मैं नाचू तू नचा, मुझे नाचना नहीं डफली बजाना आसान लगता है, नाचना किसी और को पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने ये कहा, हमने आपकी बात को पढ़ा और आपका जो मैसेज है आपके सुनने वाले लोगों तक पहुंचा। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी यूपी के रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गाँव से लिखते हैं गाने के, इन्होंने कुछ बोल लिखे हैं और वो गाना सुनने की फरमाइश की है। और भी कुछ हमारे साथी हैं जो हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, ये लोग उत्तम नगर दिल्ली से हैं। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी हमारे साथी हैं जिनकी पसंद के गीत हमने उन तक पहुँचा दिए और अब एक और गीत आप सभी तक पहुँचा रहे हैं।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
9: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
8: क्या ये जांच उपलब्ध है?
10: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
11: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
10: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
11: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
12: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
14: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
15: जी आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में अब समय वो आ गया है कि हम आपसे अनुमति लें, लेकिन चलते चलते आपके कुछ और मैसेजेस और एक और गीत आपकी पसंद का तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद आप प्रोग्राम जो सुनेंगे वो कौन कौन से हैं। 2 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आशियाना में छोटे उस्ताद, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगी साइमा। और 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और आज का जो रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है, आज के इस खास दिन पर है, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योग। और इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, योगाचार्य, इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे। और 4:05 से होगा कार्यक्रम अल्फा जन, जिसमें आज आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस, और आपको रेनबो जीनियस बनाने की कोशिश करेंगी साइमा। और 5:05 पर होगा प्रोग्राम जिसका नाम है क्या, सिटी लाइट्स। निशा तंवर इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। और हम पहुंचते एक बार फिर से आपके मैसेज की ओर। सोनिया विहार दिल्ली से आरव और अंश का मैसेज आया है, इन्होंने अपनी बात लिखकर पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं वक्ता रामजी आदित्य जी और अथर्व भाई ने मांडवी राजस्थान से। और साथ ही मैसेज किया है प्रगति ने भी पटना से, इन्होंने मैसेज किया है कि गाना सुनने की फरमाइश की है। और मैसेज कई हमारे और साथियों का आया है जिन्होंने अपनी अपनी फरमाइशें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। मलकापुर से अशोक कुमार आहूजा, आज के इस खास दिन पर फादर्स डे पर शुभकामनाएं दी हैं। एसडीआर सादिर वेस्ट बंगाल से, इन्होंने भी मैसेज किया है। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी हमारे साथी हैं। अनीता वर्मा दिल्ली से एक बार फिर से इन्होंने मैसेज किया है। और फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरीन, फारिया और ताहिरा का भी मैसेज आया है। इसके अलावा अब्बासी परिवार भी इनके साथ है, इन सभी लोगों ने मैसेज किया है हमें। और मैसेज

करने वाले में हमारे कुछ और भी साथी हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मैसेज नहीं शामिल हो पाया तो बुरा मत मानिएगा, वैसे हमारी कोशिश पूरी रही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम शामिल करें। ईशा पवार का भी मैसेज आया है और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी साथी हैं जिनकी फरमाइशें जो हैं पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपका नाम तो शामिल करने की पूरी कोशिश की है। और अच्छा लगता है जब आप अपनी बातें लिखकर हम तक पहुँचाते हैं और आपकी बातें हम और लोगों तक भी पहुँचाते हैं। तो अब राजेश को दीजिए अनुमति और आज के इस खास दिन पर फादर्स डे की एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं ये गाना। नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, मैं सायमा आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम आशियाना और छोटे उस्ताद। छोटे उस्ताद की बात की जाए और हमारे नन्हे मुन्नों को याद ना किया जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है ना? क्योंकि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो किस तरह से इस समर वेकेशन को इंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ ख़ास कर रहे हैं और कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या सारा वक्त टीवी पर बिता रहे हैं, आज जानेंगे। और बातें भी कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक हम कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात कर सकें। और क्या कुछ होगा इस प्रोग्राम में ख़ास बताऊँगी आपको, लेकिन गानों का सफ़र लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं सैमा आपके साथ। और कहते हैं ना, वाकई में जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे कहीं ना कहीं मस्ती में हमेशा झूमते रहते हैं, और जब समर वेकेशंस हो तो बाबा बस पूछिए मत। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं थक हार के कि इतना शोर मचा रखा है, इतना उछल कूद मचा के रखी है ना, तो अभी नहीं या तो टीवी ऑन करके दे दो या मोबाइल पकड़ा के बिठा दो, और बस बच्चे उसमें पूरा दिन कैसे टाइम निकालते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ खास एक्टिविटीज़ ऐसी जो हम बच्चों को बेहतर बनाने के लिए इन समर वेकेशंस में कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए छुट्टियां भी काफ़ी सारी गुजर गई हैं, और बच्चों ने क्या कुछ किया ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में, कहाँ गए, क्या अपनी दादी के गए या नानी के गए, क्या कुछ इंजॉय किया, कौन सी नई एक्टिविटी करी, कहाँ बाहर घूमने गए और किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ये हम ज़रूर आज कुछ हमारे ख़ास दोस्त हमारे साथ रहेंगे, छोटे प्यारे नन्हे नन्हे से बच्चे, और उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जब हम कुछ नया अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं या उनके साथ हम एक्टिविटीज में जुड़ जाते हैं ना, तो वाकई में हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और कहा जाता है ना कि बच्चे सिर्फ हम ही बच्चों को नहीं सिखाते, हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कभी देखा है बच्चे कभी थकते नहीं हैं और हम थकते हैं, और कभी कभी मोटिवेशन हमें बच्चों से ही मिल जाती है कि भाई ये कभी नहीं थकते, ये कभी नहीं रुकते, तो हम क्यों रुकें, हम भी तो कर सकते हैं ना। बच्चे कभी कभी बड़ों को मोटिवेट कर देते हैं। फिलहाल बातें होंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी चलता रहेगा, और देखेंगे कौन रहेगा हमारे साथ। फिलहाल बातें होती रहेंगी, प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, और मैं सैम आपके साथ बनी रहूँगी। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आपके लिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूँ सैम आपके साथ, और यहाँ पर कौन है हमारे साथ, बात करेंगे एक छोटे उस्ताद प्रोग्राम में। कोई छोटा उस्ताद अगर हमारे साथ हो तो कहना ही क्या है ना, और जानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: आप कौन?
1: मैं तुरफा।
0: तुरफा, ओके। तुरफा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: फोर्थ।
0: आप फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं, किस स्कूल में?
1: अर्वचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
0: ओके, तो तुरफा आपकी छुट्टियां कैसी बीत रही हैं अभी?
1: बहुत अच्छी।
0: बहुत अच्छी। और क्या किया आपने इन छुट्टियों में?
1: इन छुट्टियों में हम घूमने गए, इंडिया गेट और मॉल गए थे। हमारे कजिन आए थे, हम उनके साथ भी बहुत इंजॉय करे, और मेरी स्विमिंग क्लासेस भी लगी हैं।
0: ओके, तो मतलब ये है कि आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इन छुट्टियों में, ये समर वेकेशंस में। अच्छा, पढ़ाई का कैसे रहता है आपका, पढ़ाई कैसे करती हैं आप? कैसे मम्मी के साथ बैठ के पढ़ती हैं, पापा के साथ बैठ के पढ़ती हैं, या अकेले पढ़ती हैं?
1: मैं तो अभी ट्यूशन जाती हूँ, 4 o'clock मैं ट्यूशन जाती हूँ।
0: फिर?
1: और हम मुझे मम्मा छोड़ने जाती हैं कभी कभी, जब कोई बात करनी होती है मम्मा को।
0: जी, अच्छा, मम्मा को बात करनी होती है, तो मम्मा कैसे बात करती हैं, किससे बात करती हैं, आपसे करती हैं, किसी और से करती हैं?
1: ट्यूशन मैम से करती है कि तुरफा कैसे कर रही है, या कहती है कि आज ये करा देना वो करा देना।
0: अच्छा, आज आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे है?
1: यस।
0: तो कुछ खास किया आपने आज?
1: नहीं
0: नहीं आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती?
1: करती हूँ, मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ, मेरी क्लासेस लगी हुई हैं।
0: अच्छा, तो मतलब पूरी जो समर वेकेशन हैं वो आपने एंजॉय किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया? हाँ, ओके। और आज फादर्स डे भी है, आप कुछ फादर को कहना चाहेंगे अपने?
1: मैंने अपने को हैप्पी फादर्स डे विश करा और उनके लिए कार्ड भी बनाया था।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा तुरफा आपसे बात करके, और आई होप कि आप इसी तरह अपनी वेकेशंस एंजॉय करें, और आज योगा डे भी सेलिब्रेट करें, फादर्स डे भी सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: यू वेलकम,
0: थैंक यू, बाय बाय
1: बाय।
0: देखो दोस्तों, होता है ना, छोटे छोटे बच्चों से बात करके पता चलता है कि भाई क्या कुछ ख़ास कर रहे हैं बच्चे, और इसी तरह से चीज़ें बच्चों की लाइफ में जब हम पेरेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो किस तरह से चीज़ें चेंज होती जाती हैं, बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, सीख

देखते हैं और कितना एंजॉय करते हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कुछ और बच्चों से जुड़ने के लिए, कुछ और बच्चों की समर वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं और आज योगा डे और फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट करें, बात करेंगे। फिलहाल खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
8: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
7: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
8: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
7: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
11: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
10: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
11: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
12: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
13: एक छोटे से ब्रेक के बाद सायमा फिर आपके साथ लेकर आई है आपके लिए प्रोग्राम आशियाना। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में छोटे उस्ताद की, छोटे उस्ताद जो वाकई में इन समर वेकेशंस में कैसे क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं। और ख़ास करके आज अगर हम बात करें इंटरनेशनल योगा डे की, फादर्स डे भी है, इंटरनेशनल योगा डे भी है। और इंटरनेशनल योगा डे की अगर हम बात करें तो भाई सेहत भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अब चाहे वो बड़ों की सेहत हो या हमारे नन्हे मुन्नों की सेहत हो, हर चीज़ सेहत से जुड़ी है। और ऐसे में अगर हम कुछ ख़ास आसन की बात करें, जो ख़ास योगा पोजेज़ होते हैं, उनमें से एक आसन की आज मैं बात करना चाहती हूँ, जो है हल आसन। और ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है योगा का, जो कुछ अपने ख़ास कहते हैं ना, जो आपसे हेल्थ से जुड़े जो आपके बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए बहुत ख़ास ये आसन है। और अगर हल आसन, जिसमें हल का अर्थ है हल और आसन यानी कि योग मुद्रा की ओर संकेत, और अंग्रेजी में इसे प्लो पोज के नाम से भी जाना जाता है। और हल आसन कैसे करना चाहिए, ये हल आसन के फ़ायदे, कहते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, इसके कुछ ख़ास फ़ायदे ये हैं कि हल आसन आपकी पूरी रीढ़ को लचीला बना देता है, मांसपेशियों को

ला देता है, और आपकी जो ढीली कहते हैं ना, जो कभी कभी आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपको ढीली फील होती है या एकदम स्टिफ फील होती है, तो उसकी जो पकड़ है, उसकी जो ताकत है रीढ़ की हड्डी की, उसको काफी मजबूत बना देता है। इसके साथ साथ ये जो आसन है ना, हलासन, ये ऐसी मुद्रा है जो वजन घटाने में काफी मदद करती है, और खासकर पेट की जो चर्बी है उसे कम करने में भी काफी हद तक बहुत कारगर साबित होता है ये आसन। तो इस तरह से अगर हम कुछ योगा आसन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ना, तो बहुत हद तक आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर चलता रहेगा, और आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है छोटे उस्ताद। फिलहाल एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: पापा तो बैंड बजाए। कोई बात नहीं, फादर्स डे है भाई, पापा कितना भी बैंड बजाएं अच्छे के लिए बैंड बजाते हैं ना। और अगर पापा बैंड नहीं बजाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पापा की डांट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, है ना। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है आपका अपना छोटे उस्ताद, और यहाँ मैं हूँ सैम आपके साथ। और छोटे बच्चों से जहाँ बात करने का मज़ा है ना, सीरियसली क्या कुछ कर रहे हैं आज कल इन छुट्टियों में बच्चे, बहुत सारे बच्चों से आज दिल कर रहा है कि बात की जाए, मालूम किया जाए और क्या है, कौन है हमारे साथ, देखते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: आप कौन, नाम
1: मैं
0: बताइए।
1: अलीसिया।
0: हाय अलीफिया, कैसी हैं आप?
1: मैं सही हूँ।
0: ओके, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
1: मैं फिफ्थ।
0: 5th में पढ़ती हैं। ओके, तो अभी आपकी समर वेकेशंस कैसी चल रही हैं?
1: अच्छी चल रही है। हाँ,
0: कहीं गई हैं आप घूमने?
1: गई।
0: कहाँ गई?
1: मैं सुंदरनगर से
0: ओके,
1: और इंडिया गेट,
0: वेरी गुड।
1: जू, साइंस
0: ओके, तो मतलब ये है,
1: म्यूजियम।
0: ओके, तो मतलब ये है कि आपकी जो समर वेकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से बीत रही हैं, गुजर रही हैं, है ना। तो क्या कुछ एक्सप्लोर किया आपने, मतलब आप सुंदर नर्सरी गई, क्या कुछ देखा आपने वहां पर, थोड़ा सा बताएं जी।
1: मैंने सुंदर नर्सरी में वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखे। वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स थे जो मुझे तोड़ने थे, लेकिन मुझे तोड़ नहीं पाई।
0: ओके, चलिए, तो अच्छी चीज है कि आपको आपको ग्रीनरी पसंद है।
1: हाँ,
0: ओके, अच्छा, अभी हाल फिलहाल आपको पता है आज कौन सा डे है?
1: आज फादर्स डे है
0: और
1: और इंटरनेशनल योगा डे।
0: वेरी गुड, तो फादर्स डे पे आज आप क्या कर रही हैं खास?
1: आज फादर्स डे पे मैं अपने पापा को एक बुके दिया है और फादर्स डे विश करके दिया है, और केक कटिंग भी किया है, सेलिब्रेट किया अच्छे से बहुत।
0: बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, पापा खुश हो गए।
1: हाँ,
0: चलिए, अच्छी बात है। और इंटरनेशनल योगा डे जैसे आपने बताया, तो क्या कुछ किया योगा डे पर आपने?
1: योगा डे पे जैसे चक्रासन।
0: ओके, तो मतलब आप योगा पोजेस कर लेती हैं। हेलो,
1: हेलो। जी
0: मतलब आप थोड़ा सा, आपको ये योगा करना अच्छा लगता है? हाँ, ओके। और हॉलीडेज हो गए, हॉलीडेज कंप्लीट आपके अब होने वाले हैं, तो होमवर्क हो गया, कहाँ ज़्यादा टाइम बिताया, टीवी पर या फोन पर या पेरेंट्स के साथ या फिर अपनी बुक्स के साथ, क्या किया?
1: स्पेंड तो मैंने टाइम टीवी और पेरेंट्स बस।
0: टीवी और पेरेंट्स, बुक्स नहीं पढ़ने में मजा आता आपको?
1: ओप्स, अगर कहूँ तो मेरे पास एक पंचतंत्र की बुक है, तो मैं
0: ओके,
1: वो रीड कर लेती हूँ कभी कभार।
0: अच्छा, कभी कभार बुक रीड कर लेती हैं। और हॉलीडे होमवर्क किसने कंप्लीट किया, आपने कि पेरेंट्स ने?
1: पेरेंट्स और मैंने दोनों,
0: अच्छा,
1: मैं तो बस देख लेती हूँ।
0: आप देख लेती हैं, मतलब पेरेंट्स आपकी प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं,
1: जी
0: चलिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ज्यादा देर ना टीवी और मोबाइल पर नहीं रहना चाहिए, ये आपकी आईज को ना बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, पता है आपको।
1: जी
0: थैंक यू अलीफिया हमसे बात करने के लिए, और होप सो कि आपने फादर्स डे इतने अच्छे से इंजॉय किया, और आप बता रही हैं कि आज आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए,
1: थैंक
0: बाय बाय।
1: यू, बाय बाय।
0: कहते हैं ना कि बच्चों के साथ जब बात की जाती है तो सीरियसली मज़ा बन जाता है, और जब छोटे बच्चों के साथ बात की जाती है तो सच में वाकई मज़ा दुगना हो जाता है। बच्चों के एक्सपीरियंस और किस तरह से वो अपनी इन छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ज़्यादा देर तक और ज़्यादा वक्त तक अगर आप टीवी के साथ बंधे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, या मोबाइल के साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं, तो बहुत हद तक आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को एक तरफ छोड़ देते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ साथ आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हो सके, जितना हो सके, इन चीजों से दूर रहें और ख्याल रखें, अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपनी सेहत का, अपनी आंखों का, क्योंकि यही चीजें आगे

0: India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
7: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
6: क्या ये जांच उपलब्ध है?
8: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
9: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
8: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
9: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
10: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
1: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
0: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
11: Ye hai Akashvani aur aap sun rahe hain FM Rainbow.
12: एक छोटे से ब्रेक के बाद सायमा फिर आपके साथ लेकर आई है आपके लिए प्रोग्राम आशियाना, और उसमें हैं हमारे छोटे उस्ताद नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भाई उनकी जो समय वेकेशन हैं वो कैसी गुजर रही हैं, क्या कुछ वो सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, लेकिन खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूँ सैम आपके साथ, और इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम आपका अपना छोटा उस्ताद। अब कौन है हमारे साथ फिलहाल? कहते हैं ना, जहाँ बच्चे हों वहाँ थोड़ी सी गप्पे शप्पे ना हो और उनसे पूछा ना जाए कि भाई कैसे अपना टाइम बिता रहे हैं, गुजार रहे हैं, तब तक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा लगता है। फिलहाल आज एक बार फिर और इस वक्त एक बार फिर कोशिश करते हैं जानने की कि कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: आप?
1: माय नेम इज
0: ओके, योर नेम इज हुजैफ शाह। हुजैफ,
1: हुजैफ
0: आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: शाह। आई
0: थर्ड क्लास, वेरी गुड। तो आपने अपनी ये हॉलीडेज, हुजैफ, कैसे आप इंजॉय कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इस बार आप खास अपनी?
1: माय हॉलीडेज वर सो गुड। आई हैव गॉन टू विजिट माय होम कश्मीर। आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स देयर। I have visited Dal Lake. I have
0: ओके
1: seen few places there.
0: ओके, तो यू हैव विजिट डल लेक। व्हाट यू हैव सीन देयर?
1: There were fishing man and there was a lot of rides.
0: ओके, लॉट्स ऑफ राइड। व्हाट काइंड ऑफ राइड यू हैव डन देयर?
1: I have there was a balloon that we have to roll the balloon and we have to the balloon was floating on the water, so we have to spin just the balloon.
0: ओके, तो दिल्ली में कहाँ घूमे? कश्मीर का तो आपने बताया कि आप कश्मीर गए, दिल्ली में कहाँ घूमे, क्या विजिट किया?
1: दिल्ली में तो हम लोग बहुत सारी जगह घूमे, इंडिया गेट, मॉल्स।
0: ओके, इंडिया गेट में क्या एंजॉय किया?
1: We have bought lighting toys like lighting glasses, lighting more toys.
0: Most of the toys you enjoy lighting toys.
1: Yes,
0: okay.
1: And we have bought 3 comics from India.
0: 3 comics.
1: From Delhi.
0: 3 comics.
1: Yes, 3 comics. They are story books.
0: ओके, स्टोरी बुक्स। तो मतलब मम्मा के साथ स्टोरीज बुक पढ़ने में मजा आता है या पापा के साथ पढ़ने में मजा आता है?
1: मदर
0: मदर के साथ पढ़ने में मजा आता है। ओके, और आज आपको पता है कोई आज खास दिन है, आज कोई डे है जो बहुत खास है?
1: इंटरनेशनल योगा डे एंड फादर्स डे।
0: फादर्स डे, ओके, तो व्हाट हैव यू डन ऑन फादर्स डे? क्या किया फादर्स डे पर? ओके, बाटा के शूज दिए आपने अपने पापा को? और योगा डे पर क्या किया आपने?
1: योगा डे आई हैव डू स्ट्रेचिंग।
0: ओके, यू हैव डन स्क्रैचिंग, स्ट्रेचिंग,
1: स्ट्रेचिंग।
0: ओके, स्ट्रेचिंग। ओके, तो यू हैव डन लॉट्स ऑफ मौज मस्ती। ओ, और मम्मा पापा ने क्या किया? आपने मौज मस्ती तो की, मम्मा पापा को परेशान किया?
1: नो
0: नो, मम्मा पापा खुश?
1: यस, दे आर सो हैप्पी।
0: दे आर सो हैप्पी,
1: यस।
0: तो मम्मा पापा कभी ये नहीं कहते कि भाई आप हमें इतना खुश रख रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं?
1: Yes, I am a good boy.
0: You are a good boy.
1: I can do my homework by myself.
0: By yourself?
1: Yes.
0: Your parents didn't help you? आपको help नहीं की थी आपके parents ने?
1: When I think that something is wrong, so I ask them take their help.
0: Very good. हुजैफ, आपसे seriously बहुत अच्छा लगा बात करके, और अच्छा लगता है जब बच्चे अपने आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर हुजैफ।
1: ओके, बाय बाय,
0: बाय। देखा दोस्तों, कहते हैं ना कि कई बार जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, वो भी बहुत अपने आप में बहुत सारी चीजें करने में माहिर होते हैं, बशर्ते कि उनको सिखाया जाए कि वो किस तरह से अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। और समर वेकेशंस की तो खास बात यही है ना कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान तो हो जाते हैं और फिर खुश भी हो जाते हैं। जब बच्चे अपने आप से कुछ अच्छे अच्छे काम करके दिखाते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा بہتر اس چیز کو اپریشیٹ کوئی اور نہیں کر سکتا. فی الحال اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے, لیکن وقت کی کمی بھی ہے ہمارے پاس اور ہمیں جانا بھی ہے, لیکن خوبصورت گانوں کا سفر چلتا رہے گا لگاتار آکاش وانی رینبو پر. سائمہ کو ابھی فی الحال یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے گی سائمہ ایک پیارے سے گانے کے ساتھ, پھر آپ سے چلتے چلتے بائے ٹیک کیئر تو ضرور بول کے جاؤں گی. یہ پیارا سا گانا آپ کے لیے.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz.
2: Well, listeners, you are now tuned in to our local artists program on FM Dragoban at 103 MHz.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो नागालैंड सेंसस लगा पहला फेज टू आहिसे जून 16 पर 30 तारीख भितर अपनी खान घर लगा डिटेल्स ऑनलाइन दे भरी बोले कारणे sec.census.gov.in ते जाबी अपनी खान लगा घर जी होले भी गिनती होबो लागे अपनी खान भाग लुआ परा भाग प्लानिंग और डेवलपमेंट कुर बोले मदद पाबो अमी खान लगा सेंसस अमी खान लगा डेवलपमेंट
2: FM Dragoban News, music and entertainment. FM 103 megahertz.
3: सलाम नमस्ते आदाब अपनी खान सबके स्वागत करे ऐसे AIRFM ट्रैकपैन 103 मेगाहर्ट्ज हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम पुरानी फिल्मी गीत। मैं हूँ आपकी आरजे आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे टिया और आरजे लगा पुरानी फिल्मी गीत ऐसे। तो मुझे तो हमेशा से पुरानी फिल्मी गीत का ये प्रोग्राम है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ऐसे। इनफैक्ट इट इज़ मोर क्लोजर टू माई हार्ट Then RJ's choice. तो yes, चलिए तो थोड़ा वक्त निकालते हैं जिंदगी के भाग दौड़ से और चलिए उस दौड़ में चले जाते हैं जहाँ गीतों में सिर्फ सुकून ही नहीं होता है बट बहुत सारी सादगी भी होती है बहुत सारी मिठास भी होती है। तो गाना खान आज बचाओ ले थे खान तो आज गलेला गाना खान भी लाइक आई ओल्ड से वेरी कैची यू नो यू कैन ग्रूव यू कैन लिसन टू इट बट पुराने गानों में जो बात है वो कुछ अलग सा ही होता है दिल को एकदम छू लेते थे। तो यस आज भी अपने खान इतु प्रोग्राम दे ट्यून इन करेगी ना से गुना मुई उम्मीद करे से। तो ये सफर को हम शुरू करते हैं पर सफर को शुरू करने से पहले इस खूबसूरत सफर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि अपने खान इतु प्रोग्राम होनी ऐसे और प्रोग्राम ला ऊपर दे होबी आज अपनी ला दिन दे होबी और आजकल तो वर्ल्ड कप फीवर भी जाए से। तो आज मॉर्निंग लगा मैच भी इंटरेस्टिंग थे आज शाम लगा मैच भी इंटरेस्टिंग थे बोले ऐसे। तो इतु और मे बी यू कैन शेयर विथ मी योर फेवरेट पुरानी फिल्मी गीत आज तो ना बजाई ले रिक्वेस्ट प्रोग्राम खान बजाई दीबले पड़े ना हो आर्टिस्ट चॉइस से भी मुझे बजाई दीब। सो यू कैन शेयर एनीथिंग दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट एट 9436805333 9436805333 पे आप अपनी दिल की बातें लिख के मुझे जरूर भेजिएगा। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत से शुरू करते हैं इस सिलसिले को। तो गाना से नन अदर देन अभिजीत भट्टाचार्य 1994 लगा से एन अंजाम फिल्म पर अपनी खान गेस्ट करी थे वो कुंतु गाना से कुंभा तो कुरी नहीं थे वो। तो यस विदाउट एनी सस्पेंस दिए से बड़ी मुश्किल है आनंद मिलन लगा म्यूजिक समीर लगा लिरिक्स

0: किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

My adorable darling from the movie Tu Khiladi Main Nari. Apni gaan huni thakse none other than yes Anu Malik aro Alisha Chunoy laga. Waste aro adorable ki baat kare to agla gana jo hai aapko definitely adorable lagega. Gana bahut adorable hai, lyrics bahut adorable hai, and of course the singer, ek chote si singer ne ye geet gaya hai jo aaj bahut badi pehchan ban chuka hai. To diye se aaj ila program te the next song jo bahut hi khaas hai aur bahut hi लाइक स्पेशल है बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये गाना सुना है व्हेन दे वर ग्रोइंग अप. सो या लेट्स ब्रिंग बैक द मेमोरीज, लेट्स टर्न बैक टाइम एंड लिसन टू आवर नेक्स्ट ट्रैक हियर. मासूम फिल्म बा दिए से उदित नारायण और आदित्य नारायण लगा आवाज से छोटा बच्चा जान के आनंद राज आनंद लगा म्यूजिक और लिरिक्स भी तही लिखी है.

हीरो नंबर वन ब्राब निखान होनी थे शे सोना कितना सोना उदित नारायण और अलका याक निकला वासे त्या प्रोग्राम ते आखिरी की दिए से नमक हलाल ब्रा आशा भोसले लगा वास पप्पी लहरी लगा म्यूजिक और अनजान लगा लिरिक्स जवानी जाने मन और इतु गाना लगो ते ही आजी लगा पुरानी फिल्मी गीत तो समाप्त करा हबो राइट आफ्टर दिस प्रोग्राम अपना कान होनी बो रीजनल न्यूज इन नागामीज एंड इंग्लिश फॉलोड बाय वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम SMS रिक्वेस्ट और मोय वापस आ हबो 9:30 9:30 bringing you RJ's choice. Until then, enjoy this track.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह कर

0: चाहती हूँ ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 103 megahertz.
1: नमस्कार और सब लिस्टर्स का फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम आरजे'स चॉइस पे. मैं हूँ आपकी आरजे टिया और आज का ये कार्यक्रम जो होने वाला है आरजे'स चॉइस वो बहुत ही खास होने वाला है. ये जो खास पेशकश है, ये जो सफ़र होने वाला है म्यूज़िकल जर्नी, वो आई एम गोइंग टू डेडिकेट, ये जो प्रोग्राम है डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं बहुत ही खास इंसान, हमारी ज़िंदगी में सबसे खास इंसान के लिए, जो अपनी खुशियों से पहले हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचते हैं. तो यस, आपको इल्म हो गया होगा, मैं बात कर रही हूँ हमारे पापा, बिकॉज आज ऐसे है फादर्स डे. तो फादर्स डे ला नाम थे मुझे इतु लिसनर्स थ्रू आवर मीडियम थ्रू FM ट्रैकोपेन इतना कौन कौन लिसनर्स सुनी ऐसे सभी पापाओं को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे. दिन इतना भी ख़त्म हुआ ना है, तो लास्ट प्रोग्राम तो स्पेशल स्पेशल स्पेशल समवन इन आवर लाइव्स दैट इज आवर फादर्स तैखन के डेडिकेट कर दिए से. और मैं ये कार्यक्रम उन सभी के लिए भी डेडिकेट करना चाहूँगी जो अपने पापा के साथ अभी मौजूद नहीं है किसी कारण. तो मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पापा लोग तो हमसे कभी दूर ही नहीं हो सकते हैं. उनकी सीख जो होती है, उनका प्यार जो होता है, उनके वैल्यूज़ जो होते हैं, उनके संस्कार हो, उनके प्रिंसिपल्स हो, आइडल्स हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो रहे या ना रहे. तो अ वंडरफुल वंडरफुल हैप्पी हैप्पी फादर्स डे टू एवरी लिसनर हु इज़ ट्यूनिंग इन राइट नाउ. और आपने भी इतना जाइए ना विश कराना के लिए, तो जी हुई भी विश करी दी भी, याद में ही सही दिल में ही सही, लेकिन जरूर विश करना. तो यस माय डियर लिसनर्स, हमारी जिंदगी का पहला जो इंसान होता है, पहला हीरो, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट सुपर हीरोज हीरोज, पर जिंदगी में पहला हीरो, पहला सुपर हीरो और सबसे बड़ा सहारा हमें मिलता है पापा लोगों के साथ. तो उसी एहसास, इसी खास एहसास, इस खास दिन को हम बहुत ही प्यारे प्यारे गीत के साथ मनाने वाले हैं. तो आपने हम भी कुमार मैसेजेस लिखी कि ना पथाओ के लिए, तो जी हुली भी लिखी कि ना पथा भी 9436805333 9436805333 लिखी कि ना पथा भी, बिकॉज ये खास कार्यक्रम, ये खास पेशकश पापा लोगों के नाम है. तो या चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. और आज ला प्रोग्राम दे फर्स्ट गीत शुरुआत करते हैं ऐसे गीत के साथ जो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐसे, बिकॉज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज पापा दी ग्रेट, क्योंकि सच कहे तो पापा से ग्रेट कोई हो ही नहीं सकता.

0: All remember, let us all remind ourselves that behind that hard exterior, काफी बार उन प्यार ही छुपा होता है, काफी बार नहीं, हमेशा प्यार ही छुपा होता है. तो अगर आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये मौका है कि आप जाके अपने पापा को बोल सके कि आप बहुत ही स्पेशल और बहुत प्यार करते हो, देन आई थिंक यू शुड ग्रैब दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. तो इसी बात पे अनदर सॉन्ग, इफ यू वॉन्ट अ लिटल मोर करेज देन आई होप This song will give you this courage. This is from the movie Main Aisa Hi Hoon, Sonu Nigam once again with Shreya Ghoshal and Baby Aparna. Papa, Mere Papa.
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ.

Well, dear listeners, program Hindi Film Songs program RJ's Choice for the special day वक्त आ चुका है आखिरी गीत के लिए. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ही ला प्रोग्राम ते सब गाना खान सब गीत बजा खान ब्रा अपनी हन के पापा की

यादों में पापा के प्यार और पापा की अहमियत अपने हंगे वंस अगेन मतलब तो याद दिलाई दीछे बोला अपना मैं उम्मीद करे से बिकॉज म्यूजिक हैज दैट पावर टू इवोक अ लॉट ऑफ इमोशंस. तो जाते जाते सुनते हैं एक बहुत ही दिल को छूने वाला गीत, पापा मेरी जान फ्रॉम द मूवी एनिमल. अगर आज आपके पापा आपके साथ है तो उन्हें ज़रूर बताइए कि उनसे आप कितना प्यार करते हैं, और अगर वो आपके साथ नहीं है तो उनकी यादों को एक प्यार भरी मुस्कान के साथ याद कीजिएगा. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर मैसेजेस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. इसी गीत के साथ आज लगा ट्रांसमिशन समाप्त करे से, और कल सुबह 6 बजे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट.